0: বিতা অলাইভ বিতা আসি দেও বলি দেও বলি মন পিতা অলাইভ বিতা আসি দেও বলি দেও বলি মন পিতা উঠি দাদা
1: বললেই বো বেটা আসি দেউ বলি দেউ খোলি মন পেটা ঠিকই ছ। হাম্রো কমলাজী প্রতিভা শুনাউনু ভয়ো, তপাইলে মিঠো গীত গাউনু ভয়ো, পুরানো গীতকো ইয়াদ ল্যাউনু ভয়ো। আজ ভনে অব আমি ছুটিনু পর্ছ, সময় সকিন লাগিসক্যো। হাজুরকো ইয়ো মিঠো প্রতিভা সঙ্গসঙ্গে অব সাথীভাই সম্ঝনা গর্নুস है त। কমলা ফুল মগর ইয়াসঙ্গ কুরাকানী গরিরাছম হইন। হাম্রো কার্যক্রম সদাকো উসাইমা টেলিফোন গর্নুহুন্ছ, ইয়াসঙ্গ কুরাকানী গর্ছম, ইয়াহাকো মিঠো মিঠো প্রতিভাহরু পনি গীত সঙ্গীতহরু পনি শুনছম। अब भने समयले नेटो काटिसकेको छ, अब भने तपाईसँग कुराकानी गर्न सक्दैनौ। आज बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। जति पनि रेडियो प्रेमी श्रोता मन हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो माया, मिठो सम्झना छ आजको यो बसाईबाट हाम्रो तर्फबाट पनि। आज पनि हामीले अब तपाईहरूलाई विजेता छानेनौ है त। आउँदो बसाईमा पनि अब हामीले तपाईहरूको प्रतिभा सुन्छौं, धेरैभन्दा धेरै उत्कृष्ट मिठो मिठो प्रतिभाहरू सुनाउने, अनि त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै नयाँ साथी जुटिनु भयो भने आउँदो बसाईमा चाहिँ हामीले विजेता छान्नेछौं। आजको यो बसाई भने निकै निकै रमाइलो भइराखेको थियो। अब यहाँ बसेर गुनगुनै राखौं भने पनि नहुने ग्यारे। समयले नेटो काट्न लागिसक्यो, काटिसक्यो, काट्न लागिसक्यो भन्दा पनि हामीसँग समय एकदम कम छ। आजको यो बसाईमा जे जसरी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ व्यस्त रहनुहोला, तलिन व्यस्त रहनुहोला, पक्कै पनि घरमै हुनुहुन्छ होला है। आजको यो बसाईबाट भने तपाईँहरू

प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संचार क्षेत्र लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुलक घोष्दै आकरका संरक्षण प्रवर्धन औ सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकार शब्द प्रतिबद्ध रलक बटुवा रख्ल। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति संचार माध्यम उपर हुइती रलक आर्थिक नाकाबन्दी हटाईमा माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका मूल गेटमा धरना दिएल पाछा मुख्यमन्त्री आचार्यसे हुलक भेटमा उहाँसे पत्रकारका जायज मागप्रति प्रदेश सरकारका गम्भीर ध्यानाकर्षण हुलक बटुवा रख्ल। मुख्यमन्त्री आचार्यसे मीडिया क्षेत्र कमजोर हिबेर लोकतन्त्र जो कमजोर हुइना ओ निरंकुशता हावी हुइना खतरा बहरना उल्लेख गर्दै सही र गलत विषयबारे जनता हान सचेत गरिना तथा समाजका आँख खोल्न महत्वपूर्ण भूमिका संचार क्षेत्रसे निर्वाह कर्तिर लग बटुवा रख्ल। उहाँसे संघीय सरकारसे जारी गर्लक विज्ञापन सम्बन्धी परिपत्रका कारण निजी संचार माध्यममा समस्यामा पर्लक उल्लेख गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यममा केल देना व्यवस्था व्यवहारिक नै हुलक बटुवा रख्ल। भेटघाटका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य लीला शाह लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्र ऋषि चौलागाई दाङ शाखाका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी लगायतले संचार क्षेत्रसे भोक्तिरलक समस्या ओ आर्थिक संकटका विषयमा धारणा धरल रह कार्यक्रमका सहजीकरण महासंघका प्रदेश महासचिव पाण्डव प्रसाद शर्मा करल रह। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सक्कु सेवा पूर्ण रूपमा सुचारू रहल। प्रतिष्ठानका अस्पताल प्रशासनसे एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका परिमार्जित व्यवस्था अनुसार सेवा पुनः सुचारू हुलक जानकारी दिलक हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसे जारी गरलक सुविधा थैलिस तेस्रो संशोधन 2083 बमोजिमका परिमार्जित विवरण तथा लघु दर रेट प्रतिष्ठानका मिदा सफ्टवेयरमा अध्यावधिक होस एकलक हर्से रोगीलक सेवा सञ्चालनमा आन्गेलक प्रशासन जना राखल। प्राविधिक तयारी पूरा हुलसँग प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि ऐना बेरम्य हुकनक्से बीमा सुविधा मार्फत साबिक बमोजिमको जो सेवा प्राप्त गर सक्नेबाट यसै अगाडि सफ्टवेयरमा दर रेट व्यवस्थापन गर्नका कारण बीमा सेवा प्रभावित हुल रह। लौ व्यवस्था लागू हुलसँग दाङ ओ आसपासका क्षेत्रका विपन्न तथा आम सर्वसाधारण नागरिक हुकनकला स्वास्थ्य उपचारमा भारी राहत पुग्न विश्वास लेगिल्बा। एसई ग्रेड वृद्धि परीक्षा आजसे शुरू हो रहल। दाङमा आज पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयमा 386 जना छात्रा ओ 467 छात्र कैकन 853 जनसे ग्रेड वृद्धि परीक्षा देलक शिक्षा समन्वय एकाई दाङ सूचना अधिकारी तिलकराम पञ्जाडेसे जानकारी दिएरखल। सूचना अधिकारी पञ्जाडेका अनुसार दाङ जिल्लामा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको लागि 3967 जन साधारणतर्फ ओ 183 जन प्राविधिक धार हो कैकन 4150 जन विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षाको लागि फारम भरलबाट 2082 एसई परीक्षाको वैशाख 29 गते प्रकाशित नतिजा अनुसार दाङमा 4485 विद्यार्थी एनजी अर्थात नन ग्रेड हुइल रह। एनजी अर्थात नन ग्रेड हुइलक 335 जना विद्यार्थी से ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी निहुलसे शिक्षा समन्वय एकाई दाङ जना राखल। दाङमा 6 परीक्षा केन्द्र से विद्यार्थीको नक्से ग्रेड वृद्धि परीक्षा डेटीबाट आज असार 1 गते शुरू हुइल ग्रेड वृद्धि परीक्षा असार 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने बा। दाङ देउखुरी होटल व्यवसाय समिति से रैथाने खाना प्रबर्धनका लागि एक दिने खाना महोत्सव गर्न हो रहल। समितिको 32 स्थापना दिवसको अवसरमा एक दिने खाना महोत्सव गर्न कर लागिलक हो। असार 3 गते घोराईको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा हुना महोत्सवमा नेवारी थकाली मगर थारू जातिको रैथाने खानाका प्रदर्शनी कर्जिना कार्यक्रम रलक आयोजक दाङ देउखुरी होटल व्यवसाय समितिका अध्यक्ष ईश्वर बुढाहासे जानकारी दिएरखल। समिति से आज घोराईमा पत्रकार सम्मेलनका आयोजना कैकन स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक हुकनकला आकर्षण करना ओ उद्योग व्यवसायका प्रवर्धन करकलाक महोत्सव कर लागिलक समिति जानकारी करा राखल। दाङ जिल्लामा बसोबास गर्न विभिन्न जात जाति तथा हुकनक संस्कार संस्कृति से जोर्गिलक विभिन्न रैथाने महोत्सवमा धर्जिना ओ अवलोकनकर्ता हुकनकला वाकरक स्वागत सखिना कार्यक्रम फे रहलबा। रैथाने खाना महोत्सवमा विभिन्न जात जाति सांस्कृतिक प्रस्तुति फे रहना फे आयोजक जना राखल।
ओ गढवा गाउँपालिकामा उद्यमी कनकला व्यावसायिक योजना तयारी तथा ऋण प्राप्ति प्रक्रिया सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न रहल। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम कार्यालय कोराही दाङक प्रमुख सुदर्शन शर्माको अध्यक्षता तथा गढवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश बस्त्यालसे बरपौनामा सम्पन्न हुइलको। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कोराही दाङका आयोजना तथा गढवा उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा आज गढवा उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा उद्यमी कनकला व्यावसायिक योजना तयारी तथा ऋण प्राप्ति प्रक्रिया सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न हुइलको। व्यावसायिक योजना तयारी तथा ऋण प्राप्ति प्रक्रिया सम्बन्धी ओ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सबको जानकारी देखिल रह। कार्यक्रममा बोल्ती बरपौना तथा गढवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश पस्यालसे व्यावसायिकनक हक हितकलाक व्यवसाय सञ्चालनकर्ता हन व्यवसाय पूर्व यी प्रकारको कार्यक्रमसे सही दिशा निर्देश गर्न बतुवा रखल। वस्तुको वित्तीय साक्षरता बिनाको व्यवसाय जोखिमपूर्ण रलक हुन्छ। व्यवसायिकनक जो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान आवश्यक रलक बतुवा रखल। कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कोराहीदाङको उद्यम सहजकर्ता अनिल चौधरीसे उद्यमी कनकला व्यावसायिक योजना तयारीका विभिन्न चरणका बारेमा प्रशिक्षण दिएल रह। खलसे कुमारी बैंक लिमिटेडका सरोज बस्नेतले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सबको जानकारीका बारेमा सहजीकरण गरल रह। गुइठा ताजुक थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसञ्जाइफे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षे कसकु संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहिटु रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

राम राम सन्जे पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। लुम्बिनी प्रदेश

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: पिसाब को समस्या
3: पाठेघर में समस्या पाठेघर खस्ने को समस्या
1: पाठेघर में मासु पलाउने
3: निसन्तान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठेघर में कैंसर भय नभए को चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मेसिन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि सम्पर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जांच निमिति यही असार 26 गते शुक्रवार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घुराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नंबर 082-595-410 मोबाइल नंबर 98478-28913 र 98095-12871
3: हुनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ
1: नेपाली जुत्ता घर
4: राप्ती अञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो जुत्ता चप्पलको शानदार घर
1: नेपाली जुत्ता घर हामी कहाँ नेपालका 10-15 बढी ब्रान्डका आकर्षक जुत्ता चप्पलहरू सीमित अवधिका लागि 10% देखि 50% सम्म बम्पर छुट
4: अब ढिला नगर्नुहोस् आफूलाई मन पर्ने जुत्ता आफै छान्नुहोस्
1: स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गरौं स्थान सिटी प्लाजा होटलको उत्तर पट्टी थारू गल्ली घुराही दाङ
4: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98577 71546

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज ही को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल छ। सर्जन, फिजिसियन, हाड जोड्ने, नसा, प्रसुति, रेडियोलोजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थाइराइड, प्रेसर।